डक्टर, मैले उसको विल पावर जो गर्नु धेरै ट्राई गरिसकेँ, म हार खाइसकेँ। आई एम सो सरी डक्टर।

0: हाय बेबी।
1: एयरपोर्ट मत आओ, मैं नहीं आ रहा।
2: नहीं आ रहे मतलब?
1: Means I'm not coming back. I can't.
0: But I love you.
1: जितना प्यार तुम मुझसे करती हो मैं उससे करता हूँ।

सॉरी सर, वो बॉटल जिस पे भी रुकती है उसे गाना पड़ता है, बट इट्स ओके, आप तो हो।

0: Choice FM 90.4 megahertz.
1: इतनी जल्दी?
2: नजदीक आओ. मेरा नंबर. डायरेक्टली बात करना. डांट पे इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओके? वैसे भी नंबर मिल गया तो डेस्पो की तरह बिहेव मत करना. आई कैरी पेपर स्प्रे.
1: ओके.
2: बाय द वे नेहा,

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2420-670, मोबाइल नम्बर 98465656।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।